ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्की शहरियों के लिए वीज़ा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने जुमे के रोज काबीना इजलास में इस नजरसानी की मंजूरी दी। वीज़ा जारी करने की मुल्की फीसों में तकरीबन 50 साल से कोई तब्दीली नहीं की गई थी। सिंगल एंट्री वीज़ा फीस मौजूदा 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन या तकरीबन $93 हो जाएगी। मल्टीपल यानी मुकर्रा मुद्दत में मुतअद्दिद बार जापान आने की इजाज़त के हामिल वीज़ों के इजरा की फीस 6,000 येन से बढ़ाकर 30,000 येन या तकरीबन $186 कर दी जाएगी। वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सु ने नामानिगारों को बताया कि मौजूदा वीज़ा फीसें 1978 में मुकर्रर की गई थी और कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की करेंसी की शराय मुबादला में तब्दीलियों के जवाब में इन पर नजरसानी की गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क के ड्रोन हमले ने सरहद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर रूस की एक तेल तंसीब को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने हफ्ते के रोज एक वीडियो खिताब में कहा कि यह तंसीब मगरबी साइबेरियाई खित्ते ट्यूमेन में वाके है। सदर ने इंकशाफ किया कि हमले में यूक्रेन की दिफाई कंपनी के तैयार करदा अपग्रेडेड ड्रोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि बगैर पायलट की ये फजाई गाड़ियां 3,000 किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकती हैं। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यह हमला यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का मुकम्मल जायज जवाब था। उन्होंने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी ऐलान किया कि यूक्रेन ने जनूबी खित्ते क्रीमिया में तेल के डिपो समेत आदाफ को निशाना बनाया। रूस ने 2014 में यकतरफा तौर पर इस खित्ते को अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन ने जुमेरात को मॉस्को में एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। जापान की टीम ने मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप मरहले के दूसरे मैच में ट्यूनस के खिलाफ 0 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार फतह हासिल कर ली। हफ्ते के रोज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में शुरू होने वाले ग्रुप एफ के खेल में जापानी टीम, जो आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, उसका मुकाबला 45वें नंबर की ट्यूनस की टीम से हुआ। 4थे मिनट में नाकामुरा केतो ने बाएं जानिब से गेंद को क्रॉस किया और कामादा दाइची ने उसे अपने बाएं पांव से गोल में डालकर जापान को इब्तदाई बर्तरी दिला दी। 31वें मिनट में उवेदा आयासे ने दरमियानी फासले के एक ताकतवर शॉट के जरिए हाफ टाइम से पहले जापान की बर्तरी को दुगना कर दिया। जापान ने दूसरे हाफ में भी खेल पर गिरफ्त बरकरार रखी।

0: इतो जूनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल किया। फिर उवेदा ने 83वें मिनट में दाएं जानिब से क्रॉस पर हेड करके जापान की जानिब से चौथा गोल कर दिया। जापान 3 पॉइंट्स हासिल करके पहली बार जीत गया है। इस तरह नेदरलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद जापानी टीम के इस ग्रुप में मजमुई तौर पर 4 पॉइंट्स हो गए हैं।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। कतर और पाकिस्तान के मुताबिक उन मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है जो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के मुआहदे पर सालिसी के लिए किए हैं। मफाहमत की एक याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान ने 60 दिनों के अंदर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया है। अला सतह मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इतवार से पीर तक मुनक्किद हुआ। सालिसों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इसमें कहा गया है कि फ्रीकैन ने जोहरी मसाइल और ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली ग्रुपों की क्यादत के लिए आला सतह कमेटी के क्याम पर इत्तफाक किया। और जापान की हुक्मरान जमातें पॉलिसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें दुगना करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि पार्लिमानी इजलास खत्म होने में वक्त कम रह गया है। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्कियों के लिए वीजा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 23 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर ओकिनावा में मंगलवार को ओकिनावा संग्राम की समाप्ति के 81 वर्ष पूरे होने पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस संग्राम में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ओकिनावा में हर साल 23 जून को इतोमान शहर के शांति स्मारक उद्यान में स्मृति दिवस आयोजित किया जाता है। ओकिनावा प्रीफेक्चर इस दिन को तत्कालीन शाही सेना के संगठित युद्ध की समाप्ति के रूप में देखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हुई इस जमीनी लड़ाई में प्रीफेक्चर के हर 4 में से 1 व्यक्ति की जान चली गई थी। इस संग्राम की यादें बयां कर सकने वाले उत्तरजीवियों की संख्या हर साल घटती जा रही है। ओकिनावा स्थित एक विचार मंच का अनुमान है कि प्रीफेक्चर में उत्तरजीवियों की संख्या 8% से भी कम रह गई है। लोग युद्ध की यादों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के तरीके तलाश रहे हैं। उत्तरजीवियों के परिजनों ने उनकी कहानियां साझा करने का विकल्प चुना है और शिक्षक छात्रों को अपने स्थानीय इतिहास तथा पारिवारिक अनुभव जानने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सोमवार के कारोबार के दौरान जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले कुछ समय के लिए 161.93 तक लुढ़क गई। इससे पहले येन ने यह स्तर 2024 में छुआ था, जब वो लगभग 40 वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा था। येन के मुकाबले डॉलर की लिवाली बढ़ने का कारण ये अटकलें रहीं कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ये इस चिंता पर आधारित है कि तेल की उच्च कीमतें अमेरिका में महंगाई को फिर से भड़का सकती हैं। जापान की वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच रात को बातचीत होने की खबरें सामने आने के बाद येन में कुछ सुधार हुआ। इससे ये अटकलें तेज हुईं कि जापानी अधिकारी शायद मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेंगे। मंगलवार सुबह टोक्यो में डॉलर के मुकाबले येन लगभग 161.5 के आसपास रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार डॉलर की व्यापक खरीद को देखते हुए येन को सहारा देने वाले किसी भी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संदेह है। हालांकि कारोबारी सतर्क हैं, क्योंकि जापानी मुद्रा दिसंबर 1986 के स्तर के करीब पहुंच रही है। इजरायली सेना गाजा के आवासीय क्षेत्रों में अंदर तक घुसती जा रही है और ऐसे में गाजा निवासी मानवीय परिस्थितियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली सेना न केवल गाजा में मौजूद है, बल्कि अब लगभग 60% गाजा उसके नियंत्रण में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मई में हमास पर दबाव बनाने के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 70% करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने नियंत्रित क्षेत्र को तथाकथित पीली रेखा से सीमांकित किया है। मानवीय मामलों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समन्वय कार्यालय ने शनिवार को बताया कि उत्तरी गाजा शहर में कंक्रीट के पीले ब्लॉक रखे गए हैं। अरब मीडिया केंद्रों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप ये पीली रेखा सैकड़ों मीटर अंदर आ गई है, जिससे कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। निवासियों का कहना है कि आसपास के इलाकों में गोलाबारी और ड्रोन हमले हो रहे थे और अचानक आधी रात को बिना किसी चेतावनी के ये ब्लॉक रख दिए गए।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व महापौर एंडी बर्नहम ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता के रूप में उनकी जगह लेने की दावेदारी पेश की है। मीडिया खबरों के अनुसार बर्नहम के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। सोमवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से स्टार्मर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। अब लेबर पार्टी 9 जुलाई को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकारना शुरू करेगी। स्टार्मर के निर्णय को एक बदलाव की शुरुआत बताते हुए बर्नहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस प्रक्रिया में खुद को आगे रखेंगे। बर्नहम 2001 से लेकर 16 वर्षों तक सांसद रह चुके हैं। जापान के थल आत्मरक्षा बल GSDF और अमरीकी मरीन कोर के सैनिकों ने दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर के एक दूर दराज के द्वीप पर ड्रोन विमान से रात में खुफिया जानकारी एकत्र करने का अभ्यास किया है। ये अभ्यास सोमवार रात से मंगलवार तक तोकुनोशिमा द्वीप पर किया गया। ये जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यूशू में पिछले सप्ताह शनिवार से अगले सप्ताह मंगलवार तक होने वाले अमरीकी मरीन और GSDF के संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में लगभग 9,600 कर्मी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जापान के दूरस्थ द्वीपों की रक्षा के लिए समन्वय करना है। अमरीकी समकक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जापानी कर्मियों ने लॉन्च पैड से ड्रोन विमान स्कैन ईगल उड़ाया। नौवहन कर रहे जहाजों के बारे में लगभग 30 मिनट तक जानकारी एकत्र करने वाले इस ड्रोन को बाद में एक विशेष उपकरण का उपयोग करके वापस हासिल किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष सहित दुनिया भर में लड़ाई में उपयोग किए जाने के बाद से ड्रोन विमान ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने देश की तटीय रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में ड्रोन विमानों को तैनात करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में लगभग 100 अरब येन यानी करीब 61.9 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। चीबा प्रीफेक्चर के चीबा शहर के एक पार्क में भूमि की प्राचीन परत में पाए गए बीजों से उगे कमल के फूल अब पूरे शबाब पर हैं। ओगा लोटस नामक फूलों के बीज 1951 में चीबा शहर में 2000 साल पुरानी भूपरत में पाए गए थे। शहर के चीबा पार्क में 900 वर्ग मीटर के तालाब में ये कमल उगाए जा रहे हैं। पार्क में एक समय में अधिकतम 700 कमल के फूल खिले होंगे।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहां एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहां पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा,
3: हाय।
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
2: निहों ए वा कांको देसु का?
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं।
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिटेमासु।
1: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती
3: हूँ।
1: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली, लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: निहों वो ryokou shiteimasu,
1: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
5: निहों
0: का अर्थ है जापान और
5: ryokou shiteimasu
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ryokou shiteimasu
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं, या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ryokou suru
0: यानी घूमना का ते रूप है
5: ryokou shite,
0: इसके बाद जुड़ गया
5: इमास
0: तो बन गया
5: ryokou shiteimasu।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ryokou shiteimasu nihon o ryokou shiteimasu।
1: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिटेइमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
0: इसमें
5: शोकाई शिटेइमास
0: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
0: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
0: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shiteimasu.
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा,
6: ryokou desu ka?
0: घूमने आए हैं।
1: यहाँ
5: ryokou
1: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
6: हाय, आजकोची ryokou shiteimasu।
0: जी यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
1: इस वाक्य में
5: हाई
1: का मतलब है जी और
5: अच्छी
1: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो।
0: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
0: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
1: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो।
1: करना है
5: सुरु
1: और इसका ते रूप है
5: शिते।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: शिगोतो शिते इमास।
0: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
1: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
0: एक,
5: हितोत्सु,
0: दो,
5: फुतात्सु,
0: तीन,
5: मित्सु,
0: चार,
5: योत्सु,
0: पांच,
5: इत्सु।
1: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
0: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
7: はい。
2: 日本へは観光ですか？
7: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
1: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
0: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
1: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 23 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर ओकिनावा में मंगलवार को ओकिनावा संग्राम की समाप्ति के 81 वर्ष पूरे होने पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस संग्राम में 2,00,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ओकिनावा में हर साल 23 जून को इतोमान शहर के शांति स्मारक उद्यान में स्मृति दिवस आयोजित किया जाता है। ओकिनावा प्रीफेक्चर इस दिन को तत्कालीन शाही सेना के संगठित युद्ध की समाप्ति के रूप में देखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हुई इस जमीनी लड़ाई में प्रीफेक्चर के हर 4 में से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस संग्राम की यादें बयां कर सकने वाले उत्तरजीवियों की संख्या हर साल घटती जा रही है। ओकिनावा स्थित एक विचार मंच का अनुमान है कि प्रीफेक्चर में उत्तरजीवियों की संख्या 8% से भी कम रह गई है। लोग युद्ध की यादों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के तरीके तलाश रहे हैं। उत्तरजीवियों के परिजनों ने उनकी कहानियां साझा करने का विकल्प चुना है और शिक्षक छात्रों को अपने स्थानीय इतिहास तथा पारिवारिक अनुभव जानने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सोमवार के कारोबार के दौरान जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले कुछ समय के लिए 161.93 तक लुढ़क गई। इससे पहले येन ने यह स्तर 2024 में छुआ था, जब वो लगभग 40 वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा था। येन के मुकाबले डॉलर की लिवाली बढ़ने का कारण ये अटकलें रहीं कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ये इस चिंता पर आधारित है कि तेल की उच्च कीमतें अमेरिका में महंगाई को फिर से भड़का सकती हैं। जापान की वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच रात को बातचीत होने की खबरें सामने आने के बाद येन में कुछ सुधार हुआ। इससे ये अटकलें तेज हुईं कि जापानी अधिकारी शायद मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेंगे। मंगलवार सुबह टोक्यो में डॉलर के मुकाबले येन लगभग 161.5 के आसपास रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार डॉलर की व्यापक खरीद को देखते हुए येन को सहारा देने वाले किसी भी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संदेह है। हालांकि कारोबारी सतर्क हैं, क्योंकि जापानी मुद्रा दिसंबर 1986 के स्तर के करीब पहुंच रही है। इजरायली सेना गाजा के आवासीय क्षेत्रों में अंदर तक घुसती जा रही है और ऐसे में गाजा निवासी मानवीय परिस्थितियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली सेना न केवल गाजा में मौजूद है, बल्कि अब लगभग 60% गाजा उसके नियंत्रण में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मई में हमास पर दबाव बनाने के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 70% करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने नियंत्रित क्षेत्र को तथाकथित पीली रेखा से सीमांकित किया है। मानवीय मामलों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समन्वय कार्यालय ने शनिवार को बताया कि उत्तरी गाजा शहर में कंक्रीट के पीले ब्लॉक रखे गए हैं। अरब मीडिया केंद्रों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप ये पीली रेखा सैकड़ों मीटर अंदर आ गई है, जिससे कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। निवासियों का कहना है कि आसपास के इलाकों में गोलाबारी और ड्रोन हमले हो रहे थे और अचानक आधी रात को बिना किसी चेतावनी के ये ब्लॉक रख दिए गए।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व महापौर एंडी बर्नहम ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता के रूप में उनकी जगह लेने की दावेदारी पेश की है। मीडिया खबरों के अनुसार बर्नहम के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। सोमवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से स्टार्मर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। अब लेबर पार्टी 9 जुलाई को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकारना शुरू करेगी। स्टार्मर के निर्णय को एक बदलाव की शुरुआत बताते हुए बर्नहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस प्रक्रिया में खुद को आगे रखेंगे। बर्नहम 2001 से लेकर 16 वर्षों तक सांसद रह चुके हैं। जापान के थल आत्मरक्षा बल GSDF और अमरीकी मरीन कोर के सैनिकों ने दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर के एक दूर दराज के द्वीप पर ड्रोन विमान से रात में खुफिया जानकारी एकत्र करने का अभ्यास किया है। ये अभ्यास सोमवार रात से मंगलवार तक तोकुनोशिमा द्वीप पर किया गया। ये जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यूशू में पिछले सप्ताह शनिवार से अगले सप्ताह मंगलवार तक होने वाले अमरीकी मरीन और GSDF के संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में लगभग 9,600 कर्मी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जापान के दूरस्थ द्वीपों की रक्षा के लिए समन्वय करना है। अमरीकी समकक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जापानी कर्मियों ने लॉन्च पैड से ड्रोन विमान स्कैन ईगल उड़ाया। नौवहन कर रहे जहाजों के बारे में लगभग 30 मिनट तक जानकारी एकत्र करने वाले इस ड्रोन को बाद में एक विशेष उपकरण का उपयोग करके वापस हासिल किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष सहित दुनिया भर में लड़ाई में उपयोग किए जाने के बाद से ड्रोन विमान ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने देश की तटीय रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में ड्रोन विमानों को तैनात करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में लगभग 100 अरब येन यानी करीब 61.9 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। चीबा प्रीफेक्चर के चीबा शहर के एक पार्क में भूमि की प्राचीन परत में पाए गए बीजों से उगे कमल के फूल अब पूरे शबाब पर हैं। ओगा लोटस नामक फूलों के बीज 1951 में चीबा शहर में 2000 साल पुरानी भू परत में पाए गए थे। शहर के चीबा पार्क में 900 वर्ग मीटर के तालाब में ये कमल उगाए जा रहे हैं। पार्क में एक समय में अधिकतम 700 कमल के फूल खिले होंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
0: मिया ने उत्तर दिया
2: मैं
1: फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
4: निहोंग
0: का अर्थ है जापान और
4: ryokou shite imasu
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
4: ryokou shite imasu
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
4: ryokou suru
0: यानी घूमना का ते रूप है
4: ryokou shite।
0: इसके बाद जोड़ गया
4: imasu
0: तो बन गया
4: ryokou shite imasu।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ryokou shite imasu। 日本を旅行しています。

0: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाइनी शोकाइश तेइमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
1: इसमें
2: शोकाइश तेइमास
1: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
2: शोकाइश सुरु
1: यानी बताना के ते रूप
2: शोकाइश ते
1: के बाद जोड़ा गया है
2: इमास।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
3: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा
3: ryokou desu ka?
1: घूमने आए हैं।
0: यहाँ
2: ryokou
0: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा
3: हाय आचकोची ryokou shite imasu।
1: जी यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
0: इस वाक्य में
2: हाय
0: का मतलब है जी और
2: आचकोची
0: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
1: तो सुनिए और दोहराइए
2: ryokou shite imasu आचकोची ryokou shite imasu।
0: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
2: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
2: निहोंगो।
1: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
2: बेंक्यो सुरु
1: और इसका ते रूप है
2: बेंक्यो शिते।
1: तो कोशिश कीजिए
3: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
0: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
2: शिगोतो।
0: करना है
2: सुरु
0: और इसका ते रूप है
2: शिते।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: शिगोतो शिते इमासु।
1: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
0: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
1: एक
2: हितोत्सु,
1: दो
2: फुतात्सु,
1: तीन
2: मित्सु,
1: चार
2: योत्सु,
1: पांच
2: इत्सु।
0: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
1: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
1: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
2: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
5: हाय।
4: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
1: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
0: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
1: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
0: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: हूं तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
1: शिगोतो, शिगोतो।
0: करना की जापानी है सुरु और इसकी ते शकल है
1: शिते, शिते।
0: तो सामीन कोशिश करें।
2: शिगोतो ओ शिते इमासु, शिगोतो ओ शिते इमासु।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खसूसी तरीका बता रहे हैं।
3: जापान में कोई चीज़ ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है।
0: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पाँच, इत्सुत्सु।
3: एक से पाँच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
1: हितोत्सु, फ्तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
0: आज के मकालमे में सैयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
1: ओ सोबा फुतात्सु ओ नेगाई शिमास।
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।
4: ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास।
5: हाय,
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: アラブカーネクショキンカイト系マシュルンカカーナー、アシカモズソバヘ。
0: सोबा जापान का एक मकबूल रिवायती खाना है। सोबा नूडल्स या गंदम के आटे से तैयार किए जाते हैं। इन्हें उबालकर सोया सॉस वाले ठंडे सूप में डुबोकर या हल्के जायके वाली गर्म यखनी के प्याले में डालकर खाया जाता है। वैसे हीरा, जापान आकर आपने सोबा नूडल्स तो यकीनन खाए होंगे।
3: जी यकीनन, टेम्पुरा वाले सोबा नूडल्स मुझे बहुत पसंद है। वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं, तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
0: बल्कि कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा रेस्टोरेंट होते हैं जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सोबा खा सकते हैं।
3: अच्छा अनवर साहब, सोबा के हवाले से एक बात बहुत हैरत अंगेज है।
0: अच्छा वो क्या?
3: जापानी लोग सुरप सुरप की आवाज़ के साथ सोबा नूडल्स को मुंह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज़ बहुत अजीब लगती थी।
0: जी ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
3: अच्छा तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
0: मियाँ जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सोबा की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सोबा रेस्तरां कदीम अंदाज के घरों में है, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पजीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सोबा नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरां शहरी इलाकों से वहाँ आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरां का सोबा बनाने का अपना मुनफरद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

जापान के समयानुसार 23 जून मंगलवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर ओकिनावा में मंगलवार को ओकिनावा संग्राम की समाप्ति के 81 वर्ष पूरे होने पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस संग्राम में 2,00,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ओकिनावा में हर साल 23 जून को इतोमान शहर के शांति स्मारक उद्यान में स्मृति दिवस आयोजित किया जाता है। ओकिनावा प्रीफेक्चर इस दिन को तत्कालीन शाही सेना के संगठित युद्ध की समाप्ति के रूप में देखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हुई इस जमीनी लड़ाई में प्रीफेक्चर के हर 4 में से 1 व्यक्ति की जान चली गई थी। इस संग्राम की यादें बयां कर सकने वाले उत्तरजीवियों की संख्या हर साल घटती जा रही है। ओकिनावा स्थित एक विचार मंच का अनुमान है कि प्रीफेक्चर में उत्तरजीवियों की संख्या 8% से भी कम रह गई है। लोग युद्ध की यादों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के तरीके तलाश रहे हैं। उत्तरजीवियों के परिजनों ने उनकी कहानियां साझा करने का विकल्प चुना है और शिक्षक छात्रों को अपने स्थानीय इतिहास तथा पारिवारिक अनुभव जानने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सोमवार के कारोबार के दौरान जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले कुछ समय के लिए 161.93 तक लुढ़क गई। इससे पहले येन ने यह स्तर 2024 में छुआ था, जब वो लगभग 40 वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा था। येन के मुकाबले डॉलर की लिवाली बढ़ने का कारण ये अटकलें रहीं कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ये इस चिंता पर आधारित है कि तेल की उच्च कीमतें अमेरिका में महंगाई को फिर से भड़का सकती हैं। जापान की वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच रात को बातचीत होने की खबरें सामने आने के बाद येन में कुछ सुधार हुआ। इससे ये अटकलें तेज हुईं कि जापानी अधिकारी शायद मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेंगे। मंगलवार सुबह टोक्यो में डॉलर के मुकाबले येन लगभग 161.5 के आसपास रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार डॉलर की व्यापक खरीद को देखते हुए येन को सहारा देने वाले किसी भी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संदेह है। हालांकि कारोबारी सतर्क हैं, क्योंकि जापानी मुद्रा दिसंबर 1986 के स्तर के करीब पहुंच रही है। इजरायली सेना गाजा के आवासीय क्षेत्रों में अंदर तक घुसती जा रही है और ऐसे में गाजा निवासी मानवीय परिस्थितियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली सेना न केवल गाजा में मौजूद है, बल्कि अब लगभग 60% गाजा उसके नियंत्रण में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मई में हमास पर दबाव बनाने के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 70% करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने नियंत्रित क्षेत्र को तथाकथित पीली रेखा से सीमांकित किया है। मानवीय मामलों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समन्वय कार्यालय ने शनिवार को बताया कि उत्तरी गाजा शहर में कंक्रीट के पीले ब्लॉक रखे गए हैं। अरब मीडिया केंद्रों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप ये पीली रेखा सैकड़ों मीटर अंदर आ गई है, जिससे कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। निवासियों का कहना है कि आसपास के इलाकों में गोलाबारी और ड्रोन हमले हो रहे थे और अचानक आधी रात को बिना किसी चेतावनी के ये ब्लॉक रख दिए गए।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व महापौर एंडी बर्नहम ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता के रूप में उनकी जगह लेने की दावेदारी पेश की है। मीडिया खबरों के अनुसार बर्नहम के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। सोमवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से स्टार्मर ने अपने इस्तीफे की घोषणा

0: की। अब लेबर पार्टी 9 जुलाई को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकारना शुरू करेगी। स्टार्मर के निर्णय को एक बदलाव की शुरुआत बताते हुए वर्नहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस प्रक्रिया में खुद को आगे रखेंगे। वर्नहम 2001 से लेकर 16 वर्षों तक सांसद रह चुके हैं। जापान के थल आत्मरक्षा बल GSDF और अमरीकी मरीन कोर के सैनिकों ने दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर के एक दूर दराज के द्वीप पर ड्रोन विमान से रात में खुफिया जानकारी एकत्र करने का अभ्यास किया है। ये अभ्यास सोमवार रात से मंगलवार तक तोकुनोशिमा द्वीप पर किया गया। ये जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यूशू में पिछले सप्ताह शनिवार से अगले सप्ताह मंगलवार तक होने वाले अमरीकी मरीन और GSDF के संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में लगभग 9,600 कर्मी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जापान के दूरस्थ द्वीपों की रक्षा के लिए समन्वय करना है। अमरीकी समकक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जापानी कर्मियों ने लॉन्चपैड से ड्रोन विमान स्कैन ईगल उड़ाया। नौवहन कर रहे जहाजों के बारे में लगभग 30 मिनट तक जानकारी एकत्र करने वाले इस ड्रोन को बाद में एक विशेष उपकरण का उपयोग करके वापस हासिल किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष सहित दुनिया भर में लड़ाई में उपयोग किए जाने के बाद से ड्रोन विमान ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने देश की तटीय रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में ड्रोन विमानों को तैनात करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में लगभग 100 अरब येन यानी करीब 61.9 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। चीबा प्रीफेक्चर के चीबा शहर के एक पार्क में भूमि की प्राचीन परत में पाए गए बीजों से उगे कमल के फूल अब पूरे शबाब पर हैं। ओगा लोटस नामक फूलों के बीज 1951 में चीबा शहर में 2000 साल पुरानी भू परत में पाए गए थे। शहर के चीबा पार्क में 900 वर्ग मीटर के तालाब में ये कमल उगाए जा रहे हैं। पार्क में एक समय में अधिकतम 700 कमल के फूल खिले होंगे।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介

0: しています。それで日本を旅行しています。
1: それは素晴らしいね。
0: お待たせしました。
2: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
3: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
4: おそば3つお願いします。
2: 3そばれあいえ。
3: फिर दुकानदार ने कहा,
5: हाय
2: जी।
3: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
4: 日本へは観光ですか?
2: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
3: मिया ने उत्तर दिया,
0: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
2: मैं फोटोग्राफर हूँ। दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ।
0: それで日本を旅行しています。
2: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
3: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा,
1: それは素晴らしいね。
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली,
0: お待たせしました。
2: लीजिए।
3: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
0: निहों वो ल्योकों स्टेमस,
2: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
3: इसमें
6: निहों
3: का अर्थ है जापान और
6: ड्योको शिते इमास
3: का मतलब है घूम रही हूँ।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
6: ड्योको शिते इमास
2: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
6: ड्योको सुरु
3: यानी घूमना का ते रूप है
6: ड्योको शिते,
3: इसके बाद जोड़ गया
6: इमास
3: तो बन गया
6: ड्योको शिते इमास।
3: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
6: ड्योको शिते इमास, निहों वो ड्योको शिते इमास।
2: बातचीत में मिया ने कहा, निहों नो को तो काइगाई नी शोकाई शिते इमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
3: इसमें
6: शोकाई शिते इमास
3: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
6: शोकाई सुरु
3: यानी बताना के ते रूप
6: शोकाई शिते
3: के बाद जोड़ा गया है
6: इमास।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
7: ड्योको देसु का? हाय, आचकोची ड्योको शिते इमासु।
3: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा,
7: ड्योको देसु का?
3: घूमने आए हैं।
2: यहाँ
6: ड्योको
2: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
7: हाय, आचकोची ड्योको शिते इमास।
3: जी, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
2: इस वाक्य में
6: हाय
2: का मतलब है जी और
6: आचकोची
2: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
6: ड्योको शिते इमास, आचकोची ड्योको शिते इमास।
2: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
6: ड्योको देसु का? हाय, आचकोची ड्योको शिते इमास।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
6: निहोंगो।
3: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: बेंक्यो सुरु,
3: और इसका ते रूप है
6: बेंक्यो शिते।
3: तो कोशिश कीजिए।
7: 日本語を勉強しています。
2: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
6: शिगोतो।
2: करना है
6: सुरु
2: और इसका ते रूप है
6: शिते।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: शिगोतो शिते इमास।
3: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
2: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
3: एक,
6: हितोत्सु।
3: दो,
6: फुतात्सु।
3: तीन,
6: मित्सु।
3: चार,
6: योत्सु।
3: पांच,
6: इत्सु।
2: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
6: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
3: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
6: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमास।
3: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
6: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमास।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमास।
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
1: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
2: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
3: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
2: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए
2: सायोनारा।

0: それで日本を旅行しています。
1: इसलिए मैं जापान भर में सफर कर रही हूं।
2: खातून का शौहर कहता है।
3: それは素晴らしいね。
1: ये तो बहुत शानदार बात है।
2: इनकी गुफ्तगू के दौरान बावर्ची सोबा तैयार कर रहा था। जैसे ही सोबा तैयार हुए, वेटर्स उन्हें मेज पर लाई और कहा,
4: ओमोतासे शिमाशिता।
1: इंतजार के लिए माजरत, ये लीजिए।
2: सफर के दौरान मिलने वाले लोगों से गुफ्तगू करना वाकई दिलचस्प होता है।
1: बिल्कुल, और आज के मकालमे को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने बारे में बताया जा सकता है। इस तरह गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान का सफर कर रहा हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं।
1: निहोन के मायने तो आपको याद ही होंगे जापान, और ryokoshiteimas यानी सफर कर रहा हूँ। आज का नुक्ता ryokoshiteimas यानी सफर कर रहा हूँ, हालिया जारी काम के बारे में बताने के लिए फेल की तेशकल के बाद इमस लगाया जाएगा। ryokoshuru यानी सफर करना की तेशकल है, ryokoshite इसके बाद इमस लगाने से ये बनेगा ryokoshiteimas।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। आज के मकालमे का एक जुमला निहोनो को तो खाई गई नी शोकाइश्तेमस यानी मैं जापान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवा रही हूँ भी इसी अंदाज का जुमला है, जिसके जरिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में बताया जा सकता है।
1: जी हाँ, शोकाइश्तेमस यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शोकाइश्सुरु यानी मुतारिफ करवाना की ते शक्ल शोकाइश्ते के बाद इमस लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
5: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: और अब मकालमे की तशरीह।
5: ryokou desu ka?
2: क्या आप सफर कर रहे हैं?
1: ryokou एक इस्म है जिसके मायने है सैयाहती या तफरीही सफर।
5: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
1: हाई यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायने है इधर उधर।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। सामीन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai.あちこち旅行しています。
1: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
6: निहोंगो। निहोंगो
1: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शक्ल है
6: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते
5: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: और अगर आप काम कर रहे हों तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
6: 仕事。仕事。
1: करना की जापानी है सुरु, और इसकी ते शक्ल है
6: して。して。
1: तो सामीन कोशिश करें।
7: 仕事をしています。仕事をしています。
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
2: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है
1: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु।
2: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
6: हितोत्सु, फ्तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
1: आज के मकालमे में सयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
6: おそば2つお願いします。
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।

0: お蕎麦3つお願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: アラブカーニクショキンカイトケマシュルンカカーナーアシカモズソバヘ。
6: ソバジャパンケマクボルリバイティカナヘ。ソバノードルシアガンドムケアテセテヤーキエジャテヘ。イネオバーカーソヤソースワレテンデスープンデボーカーヤーケザイヘアリガンヤニケペアリメダルカカヤジャテヘ。ウセヘラジャパンアカアプソバノードルトヤキンンカヨンゲ。
5: ジヤキンン。テンプラヴァリソバノードルズムジボハッパサンデ。वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं। तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
6: बल्कि कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा रेस्टोरेंट होते हैं, जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सोबा खा सकते हैं।
5: अच्छा अनवर साहब, सोबा के हवाले से एक बात बहुत हैरत अंगेज है।
6: अच्छा वो क्या?
5: जापानी लोग सुरप सुरप की आवाज के साथ सोबा नूडल्स को मुँह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज बहुत अजीब लगती थी।
6: जी ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
5: अच्छा तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
6: मियाँ जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सोबा की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सोबा रेस्तरां कदीम अंदाज के घरों में है, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पजीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सोबा नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरान शहरी इलाकों से वहां आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरान का सोबा बनाने का अपना मुनफरद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।